पौड़ी अपे करना क्यों कला पे तह धारी है, देखा कि अपना तर्क ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब को यही बारी है, जिसके जी प्राण है के साय मनो सारी है, अपन थी अपना आपे ही काज।

0: गए मशक्कत कार, नानक ते मुखे उजले केते छुटे ना, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कार, नानक ते मुखे उजले केते छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवते जी सहाय, वार श्री भगवते जी की पातशाही दसवें, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेंते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताई, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां, चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाहे, देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचिहारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुआसा नाल निभाए, तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी कहो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेत आवण का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रे आए, ते देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान के सुदान रहत दान, बाबेक दान वसाह दान भरोसा दान, धना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जोगी अटल,

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश समतोज की जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत जब लौ नहीं भाग ललार उदय तब लौ भ्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो ताति विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा पिछल राती उठ बहंदे कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा अमृत वेड़े सरना बंदे कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा एक मान होए गुर जाप जपंदे कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा साध संगत चल जाए जुड़न दे कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा गुरबाणी नित गाए सुनन दे कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा मन मेली कर मेल मलन दे कुर्बाणी तिन्ना गुरसिखा पाए भगत गुरपुरब करन दे गुरसेवा फल सफल फलन दे सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विच हो जाए सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते।

चरण कमल स्यों जाका मन लीना, सेजन त्रिपत आगाई, गुण अमोल जिस हृदय नाम वसेया, ते नर त्रिशन त्रिखाए, चरण कमल स्यों जाका मन लीना, से जान त्रिपत आगाई, गुण अमोल जिस हृदय न बसेया, ते नर त्रिशन त्रिखाए, हर आराधे आरोग अनदाई, जिसनो विसरे मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई, रहौ जेह जन ओट गही प्रभ तेरी, से सुखिये प्रभ सरणे, जेह नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मह गरने, जेह गुरमान प्रभु लिवलाई, तेह महा आनंद रस करिया, जेह प्रभु विसार गुरते बेमुखाई, ते नरक कोर मह परया, जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा,

जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा। नानक सह पकरी संतन की, हृदय भय मगन चरनारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यों जाका मन लीना। से जन तृपत आगाई, गुण अमोल जिस हृदय न वसया। ते नर तृष्ण

राखो प्रभु नानक दे कर, नानक दे कर हाथ। प्रभ जी तू मेरे प्राण अंधार है,

पवन गुरु पहाने पिता माता धरत महत दिवस रात खेल सगल जगत धंधे आईया वाद्य धर्महूर गर्मी आप अपनी के नेड़ के

सखत का नानक ते मुख उजले किती छुटे नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सर्वठार मोह सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यों। सिमृते शस्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यों दोहो।

कहते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पार पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वसतु पाइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

दान भवेक दान विश्वास दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर।

दुख सोग काटायो डेरा, आनंद मंगल विश्रामा, मन बांछत फल मिले अचिंता, पूरन होए काम इहां सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवण जाने निरपाओ पाए हृदय नाम वसिया, अपने सतगुर के मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द ब्रह्म पागा कहो नानक ताके पूर करमा।

0: हजूर शब्द जाऊं की आरती फर्जी की अदास फुल चुप मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लागे बंद होवन नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाए सरबत दा भला
1: फतेह।

हम आव गुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सोत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेवीऐ, अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है, सवना दाविसाहु। सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है, सवना दाविसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

माया मोह मगन अंधियारे, देवन हार ना जाने, जियो पिंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माने। माया मोह मगन अंधियारे, देवन हार ना जाने, जियो पिंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहियो प्रभु स्वामी, जो किश कर है सोई सोई जाने, रह न कछु है शानी। रहाओ जिहवा स्वाद लोभ मद मातो, उपजे अनक विकारा। बहुत जोन परमत दुख पाया, होमे बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पढ़ दे मह, पर दारा संग फाके। चेतर गुपत जब लेखा मांग है, तब कौन पढ़दा तेरा ढाके। दीन दयाल पूरन दुख भंजन, तुम बिन ओट न काई।

0: मिलार जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवा, सर्व सुखर नाम बढ़ाए, गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तृत मात, दिवस रात दुई दाई दाया, खिल सकल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाच।

तिनी पिता रंग सो जिनको लिखिया हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड़।

मन जान गावे अशाल छला गावे गुण तुम अटल मंडल वे भगत पाए रास जाने ओ कभी का।

0: राम रसक नानक गुरे राज जोग ते माणियो।
1: सतयुग ते माणियो छल्यो बल बावन पायो त्रेते ते माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्त कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
2: गुण गावे रविदास भगत जय दीप त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जग छायो सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गौर नित नव तन जग छायो।
1: गुण गावे पयाल भगत नगाद पयंगम महाद्यो गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार है ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन कम सब श्रेष्ठ सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो।
0: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो मां ताता गुण रवे जेन चकर वे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बापरू रंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो।
1: जग और न जाए महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गे मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रतश हृदय गुर अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
3: राय चोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रकाश गुरु अंगद दियो निदान कथ कथा ज्ञान पंच भूत बस किने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कलयुग राखे पत अगन देखत गत चरण कवल जास साबित माने ओ मान तब हे पयो परसन राज जोग तखत दियन गुर रामदास।
4: जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो देन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे सोई रामदास गुर बल भाण मिल संगत धन धन करो जिह सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरहो नरहो।
5: अंत न पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी हुन भेद बेरंच बेचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहे तरी।
0: जाको मुन ध्यान तरै फेरत सगल जुग कब हूँ ककौ पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको सेव मुन गहनात जात कबिलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा ता।

जिस पास बैठिया सोही सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, श्लोक महला तीजा। सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो पाओ, ओसनो सुख ना उपजै,

सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो पाओ, ओसनो सुख न उपजे, पावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले, सच्चे स्यों लिव लाओ। महला तीजा, ए मन ऐसा सतगुर खोज लो, जित

सहसा मूल न हो वई, हौ मैं शब्द जलाए। कूड़े की पाल बिचों निकले, सच वसे मन आए। अंतर शांत मन सुख होए, सच संजम कार कमाए। नानक पूरे कर्म सतगुर मिले, हर जियो कृपा करे जाए। पौड़ी जिसके कर दीवान हर होवे, तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। तिसको तलकी किसै दी नाही, हर दीवान सब आन पैरी पाया। मानसा कहो दीवान हो कोई नस पज निकले, हर दीवान कोई किथे जाया। सो ऐसा हर दीवान वसिया भगतें के हृदय,

आवे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आए ता। देग तेग फतेह बिरद।